0: रूपया रिसा संगत सतगुरां ने पार बख्शिश की रहमत की कंठपाठां दे भोग सुखनी साहब दे भोग पए। सतगुरां ने महान हुक्मनामा बख्शिया, सानू ये मत दित्ती कि भाई किस तरह गुरु का हुक्म मनना है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, आप तत्तियां तो लोहां ते बैठ के भी सानू दर्शाया है कि दुख नू दुख नहीं मनना। सो आओ सतगुरां दा धन्नवाद, सारिया मतावां बीबियां दे चरणां च बेनती है, जो भी जिन्हां जिन्हां ने भी सुखनी साहिब दे जापत विच भाग लिया है, सारिया ही सिर पौला उठ के जी सारिया बीबियां खड़िया होके बीबी सुरिंदर कौर कितने की जथेदार नहीं
1: हाँ शुरू करो
0: आओ आओ सारियां उठी गई उठो उठो उठो उठो सत श्री अकाल

0: बाद बीबीर जिंदर कौर जी बोले सोनेहा
1: श्री अकाल बोले सोनेहाल
0: सत श्री अकाल। सत्कारयोग भाई साधु सिंह जी जां हरमिंदर सिंह जी।

प्रचा मेरी तुम करो उसे खुवार से संग करो दुष्ट जिते उठपाता सगन मलेश करो उनका जे तदा सड़नी परे तिनके दुष्ट दुख वह मरे पुरुष जीवन पपरे तिहारे तिनके तुम संकट सपटारे

0: चलना। सो आओ अगला जो प्रोग्राम है आप जी सेक्रेटरी साहब दसणगे कीर्तन तो उपरंत 6 बजे रहरा साहब दे पाठ होगा। आओ उन्होंने पासों सानू करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। गुरु दरबार के जुड़ बैठे गुरु खालसा जी, अज जो आप शहीदां दे सरताज बाणी दे बोहित शांति दे पहुंच श्री गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी दिहाड़े मना रहे हैं, उस संबंध में खंड पाठ साहिब दे भोग पए हन। सारे परिवारों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये शहीदों के समागम होंगे ने, मैं देख के सारे परिवारों नूं आप जी का दिलों ऋणी हाँ जो आप अज इत्थे पहुँचे हो। जो अज दे समागम ने हुण आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन निहाल करनगे। थोड़े प्रोग्रामां विच देरी है, साडा जो मेन सीगा प्रोग्राम भी 5 बजे असीं कीर्तन स्टार्ट कर लईए, पर दीवान दी थोड़ी लेट चल रहे ने, माफ़ी चाहते हाँ। जो अज दे दीवान ने आप जी नूं हुण गुरबाणी कीर्तन ही निहाल करनगे साडे बड़े ही सत्कारयोग भाई दलबाग सिंह जी, उस तो उपरंत रहरा साहब, उस तो उपरंत कथा, उस तो उपरंत जो रैगूलर दीवान ने साडे, वो इस तरह ही चलणगे, जिस विच साडे पास पंथ दे महान कीर्तनी है भाई सरबजीत सिंह जी लाडी 8:10 तो लैके 9:30 तक गुरबाणी कीर्तन निहाल करनगे। सो आप सब नूं निमरता सहित बेनती है कि आप गुरु घर आ के इन्हां दीवानां दे विच जरूर हाजरी भरो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
2: वाहिगुरू।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हरजन सतगुर संगत पाई

तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सिधान, ठाकर करतल धरिया जन नानक बल बल सद बल।

चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम गावो, आप आदे मोहे बचावो। सुखी वसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मोर इच्छा निज कर दे करिये, सब बैरन को आसंगरिये। पूर्ण होए हमारी आशा, तुर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें

नमस्कार तिजी को हमारी सगल प्रयाजन आप सुवारी शिवकन को सवगुन सुख दियो शत्रुन को बल मोहद कियो।

रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाश्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताए वारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दार्द दुष्ट रोग ते रहा।

दुष्ट दोख ते लियो बचाई। कृपा करी अंपर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सवराता। किल विक सकल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को सह करता। श्री अस्त जब पै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछत बल पावे सोई, दुख नंत से व्यापत कोई अड़िल।

पादरसुदयष्टमे रविवारा तीर्थद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्रोपख्याने त्रया चरित्रे मंत्री भूव संबंधे 405 चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त अंभजू दोहेरा।

करिया देख देख जग में दो चले राख्या मोय उन दल तुम करो सदा ब्रत पारा तुम साहे मैं दास तिहारा।

कोटक विष्णु महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सस्क्रोर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाखत नेत सुर्गवास रघुवर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो ए कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट नावे विष्णु भगत की ए फल होई आद व्याद स्वै सके न कोई सम

तिस साहिब की टेक नानक मने माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। तिस साहिब की टेक नानक मने माहे, जिस सिमरत

इतनी सेवा प्रवान करने जी कीर्तन कर दिया प्रहलाद जी माफी बख्शने भाई साहब भाई कुलदीप सिंह जी दमन टकसाल वाले अज के विशेष दिहाड़े तरन तरन साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के अज शहीदी दिहाड़े हैं इस संबंध आप जी कथा राही जोड़नगे उन्होंने पासों प्यार कसरन करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सतगुर का दर्शन पाए जियो, जब लो नहीं पागल लार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो।

जपी है एक बार। नौखंड प्रथमी फिराचर जीवाय मह उदास पीसर थीबाय अगर माय हमत प्राण कन कसब है भरपूम दान। न्यौली कर्म करे भव आसन जैर मार्ग संयमत साधन।

भूतम गिरिया सा संग दुर्मतमल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम पला हर का नाम जप हो जी सदा। सगल बानी में अमृत बानी हर को जासुन रसन बखा।

जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मोला मनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता शिवराज। जय प्रसाद सबकी गत।

ऐसा आपरस वैष्णो सो जिस पर सुप्रसन्न मिशन की माया ते हुए भिन्न कर्म करतो वह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काउ फल की इच्छा नहीं बाछ है केवल भगत कीर्तन संग्राचा है।

अनंत तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर भरे अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवय हर दुर्गे को कैसे गवय आपस को जो भला कहावे तसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होय कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मोजते का छोए तब इसको सुख नाई कोए जब जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी भी तब लग ने चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राये दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छुट्टे सहज घटे लख उड़तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के कर न तृप्तावे खप खप मरै मिना संतोख नहीं कौ राज स्वप्न मनोरथ ब्रिथे सब काज नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी कसे प्राप्त होए करण कराम आपे आप सदा सदा दान कर जाप करण कराम करने हास के आद कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आ प्रभ सोए जोग जकीनों सपने रंग सबते दूर सब हूं कै संग।

राष्ट्रपति संत के दुख ने आर जा घटे, संत के दुख न जमते नहीं छुटे, संत के दुख न सुख सब जाए, संत के दुख नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभा तेहीन, संत के हते को रखे ना कोई, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपा रे कृपा जे करे नानक संत संग नंदक भी तरह, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन काग जो लवे, संतन के दुखन सर्व जोन पाए, संत के दुखन त्रगत जोन खिरमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको शले, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच नि चाहे, संत दुखी का थाऊं को नाहे, नानक संत भावे तो वही विगत पाहे, संत का नंदक महात ताई, संत का नंदक हिंट करना पाई।

मुख संत का दुखी सदा अपवेत संत का दुखी के सहकार नहीं मेत संत के दुखी वो डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुखना सुख से ठर संत के दुखी को नाही ठाऊ नानक संत भावेता लय मिलाए संत का दुखी अद बीच से टूटा है संत का दुखी कितने काज ना पहुंचाए संत के दुखी को ध्यान प्रमाइए संत का दुखी

दरबाय। अत सूरज गौ कहावे प्रभु की कला बिना कहता वह जे को होए बहे दातार तिस दिन हार जानेगा वार। जिसवर प्रसाद टूटे हों रोग नानक सोजन सदा अरोग। ज्यो मंदिर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन। ज्यो पा खान लाभ चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै। ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन।

सेवक नाम करं सेवक परपालनहार सेवकी राखे निरंकार सो सेवक जिद्या प्रवतारे नानक सो सेवक सासा समारे अपने जन का प्रता ढाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत में कोई ना लाखे प्रभु के सेवक का को ना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभु ने सेवा लाया नानक सो सेवक दैत से प्रगटाया निकी कीरी मैं कर राखे पसम करे लश्कर कोट लाखे जिसका सासना काट थे आप ताको राख देख रहा हाथ मानस जतन करत बाबा तिसके करता बिरथे जात मारे ना अवर राखे अवर ना कोय सर्प जिया का राखा सोए काये सोच करे रे प्राणी जप नानक बरबला के बिडाणी बारंबार बार प्रभ जपी है पी अमृत ए मंत्र पिय नाम रतन जन गुरमुख पाया तिस विष अवर नाही दृष्टाया नाम धन नाम रूप रंग नाम सुखर नाम का संग नाम राजो जंत्र बताने मंदन नामे नाम समाने उठत बैठ सोबत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जस जेबा दिन रात प्रभ ने जन कीनी दात

अंधकार दीपक प्रकाश है, नारंग भरमो दुख तैते नासे, तप्त माए ठाण वरताई, अणत ब्याह नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे देसे, साधु के पूर्ण देसे, पाओ चुका जन पोहे बसे, सगल ब्याद मंते खै नसे, जिसका साधन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी, तित पाई चुके ब्रह्म गमन सुन नानक हर हर जस श्रवन, निर्गुण आप सरगुण भी ओही कला धार सगरी मोही, अपने चरित प्रभ आ बनाए अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोय, सर्व निरंतर एको सोए।

राष्ट्रपति संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवरूपाव समेत विसारो चरण कमल हृदय उतारो करण कारण सो प्रभ समरात दृढ़ कर गहो नाम अलवाते तन संचो हो भगवंत संजना का निर्मल मंदे का सराखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार गुण उठता मैं सो तन हर सेवा ते पामे जिस सुख को अर्थ बाँचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे परी करनी सा शोभा बज हर की सरणी अनुग पावी रोग ना जाहे रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निधान मेर नाम निधान जब नानक दर गए प्रवान मन प्रभु दो हर के राय दादे तावत आवे ठाए तागो बिघन लागे कोए जागे हृदय बसे हर सोए कलता ती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन से पूर्ण हुए आस भगत पाया तम प्रगास

राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार जात भाविता सृष्ट उपाय अपने पहाड़े लय समाहे तुम ते भिन्न नहीं कुछ होया अपनु सो सब जगत परोहे जागो प्रभु जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाहे सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई ना मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे

अमृत भजन हर के गुण गाओ प्राण तरण गाए हा सुहा वाट पैर प्रभे खेपे खो नेरा मिटिया ज्ञान मिनसे अंधेरा सुरब दे सिर दे बसाओ मन छे नानक फल पावो हालत फल दोयले सुवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसे ते साज प्रिख्या मंदन नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मंदे भाव जाए सजवा पार करो बा पारी दरगह निभे खेप तुम्हारी एका

हृदयसवधर्मसन्दना सुनेसु भजन सर्व्यापीराम संग्रजन जिन जातात सकिए रहत सद भजन साधु सब कहत जो जो वे सोई सुख माने करन कराम नार प्रभ जाने अंदर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सद किया सब सात तिस प्रभ तय सगली उत्पात तिस भावितां करे विस्तार तिस भावित एकंकार अनकला लखी न जाय जिस भावित सिलाए मिलाए कवन निकट कवन कही है दूरा पिया पाप भरपूर अंतर गज साहब जनाए नानत जना बुझाए सरभूता बरतारा सर्वनैना पेखनहारा सगल समग्री जाका तना अपन जिस आप ही सुना अमन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी किन्नी माया सब गए मत अलिप तो रह जो कुछ कहना सुहा पे गए आग्या वे आग्या जाए नानक जा पावे तले समाए इसते हुए सो नाही बुरा बुरा कहा हो गने कुछ करा आप भला कर तू तत् नहीं किया पे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज हो।

संग पाज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर ना बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक।

असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोव असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोव असंख कह

कह ना सकत कह अचाल मुहूर्त अनुपहु प्रकाश अमित ओज कहि जय कोट इंद्र इंद्रान साहे सहान गनिजय।

तवे प्रसाद कहते। क्या छेज देश है, क्या भेज भेस है, क्या गांज कर्म है, क्या पांज भरम है, क्या भेज लोक कै, क्या देत सोक कै, के बतूत वर्ण है, के विभूत कर्ण है, के राजंग प्रवाह है, के धर्मंग तुजा है, क्या शोक वर्ण है, के सर्वा अपर्ण है,

रूप है, ओंकार रूपे अनास रूपे अनंगी है नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभग त्रिभादे गंजे गादे सुभंग सर्वभागे सो सर्वानुरागे त्रिपुकित स्वरूप है, अछेद है, अछूत है, केदार कंग प्रनास है, पृथ्वी और प्रवास है,

जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्मवास है, जास के जास है, प्रजान प्रयाशंद

साजियो आप भी ने रचियो नाओ दोई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता है आप तुझ देवे करे पैसाओ तू जानो ई सब सह दिल से जिन कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन

0: किया सकल जहां सेवक सेवक सेवक सेवक करम चढ़ाओ पहली रैन जना मन चाओ
1: सिखी सिख्या गुर विचार नगरी कलम गाय पार को दो चरखा।

ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगट आग सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम है विचार है जिन सच्ची स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

0: जतिसता वे जुत ना जाने छड़ वह है घरबार सबको पूरा आपे हो वह घट न कोई आख है पत प्रवाना पिछे पाई है का नानक तो ये जापी मोहल्ला पहला
1: वधी सोच ज्ञान का सच्चा वे के सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जात न जोर है अगे जियो नवे
0: जिनकी लेख पत पवे चंगे सही के
2: औरी तुर करन जना को पाया ता तिनी कसम ते आया इना चंदा के बस कुछ ना ही तुर वे की जगत पाया एक नानु तो मिलाए कापो तुत खुआया गुर कृपा ते जाने जते तुत आप हो जाए।

शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्राह्मण है, खत्रि शब्द सूर शब्द सूर्य शब्द प्राकृत है, सर्व शब्दम एक शब्द जे को जाने पे हो नानक ताका दास है, सो इंद्रंजन देव महला दूजा, एक कृष्ण सर्व देवा देव देवात आत्मा आत्मा भास देव से को जाने पे हो नानक ताका दास है, सो इंद्रंजन देव महला।

0: मत्था टिका ते धोती का खाई हाथ चूरी जगत का साई नील वस्त्र पहरोए भगवान मलेश थान ने पूजे प्राण अब भाग्या का कुठा बकरा खाना हो चौके ऊपर किसे ना
1: देख के चौका गड्डी का ऊपर आए बैठे कूड़िया।

कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरै। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मनाया वस्या जन इच्छा सा पुजाइया। सदा कुरबान कीता गुरु बिट्टो हो जिह दी एह वडियाईया। कहे नानक सुनो संतो हो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शबद तितकार सपागै कार सपागै शबद वाजे कला जित कार धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया।

जिन हर नाम स्यों हमारी प्रीत बनाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संग जी, आप संगतां ने अमृत वेले दुआना विच हाजरी भर के गुरबाणी कीर्तन कथा दे लाह प्राप्त कीते हन। सतगुरु साहब जी रहमत करन, आप संगतां दी दर हाजरी प्रवान करन, धर्म करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शन जी। इत्थे अमृत वेले दवाना दी संपूर्णता है। शामा दे दवाना विच आप जी ने वध तों वध गुरु घर हाजरियां भरनियां। हुण कड़ाह प्रसाद दी देख वरतरी है, उपरंत जो बच्चों तो आप बाणी सरवण करांगे जी।

चक्र वक्र फिर चत्र चक मानी पुर तीन आदि देवनाद मूर्त थाप्य सवै जय थाप सर्व विश्व रचय स्वयं भव गणन पंजन हार तरम ताम सपरम रहत अपूत अलख अपेश गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम गर्भ गंजन सर्व पंजन आदि रूप सूत सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व शास्त्र न जाने जय रूप रंग कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवे ही बहुचित आसन भंग उपमान अंग आजान बाहो शाहन शाह

0: के कारण कनिंद है के रोजी हिंद है
1: के सर्वंग
0: कली है के सर्वंग दली है
1: के
0: सर्वत्र गाउणे के सर्वत्र पाउणे
1: के
0: सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र स्थापिए
1: के सर्वत्र मान्य
0: के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के अकाल अलाम है के साहेब कलाम है
1: के सर्वत्र जू है मांग रजू है
0: के हमेश सलाम है सली खत्म दाम है
1: नीमन से रस्ता है बरी गुल परस्ता है
0: गरिंदल मकाने जमीन वल जमाने
1: रजू
0: वल निदाने حریف العجیم رجائے کی کینے
1: انیک الترانگ ہے پید ہے پنگ ہے
0: عجیج النواج ہے گنیم الخراج ہے
1: لوگ سلوپ ہے ترمکت بود ہے
0: پربکت پربا ہے سجوگت صدا ہے
1: سدائم سلوپ ہے پیدی انوپ ہے
0: سمست پراج ہے صدا سربساج ہے
1: سمست صدا میں سدائم الاکام ہے
0: جبال سلوپ ہے اگاد ہے انوپ ہے
1: اونگا سلوپ ہے ناد سلوپ ہے
0: اننگی نام ترپنگی درگا میں
1: ترپنگ
0: دباتے گنجے گاتے سربنگ
1: سرب
0: پاگے سو سربہ انوراگے
1: प्रभुक्त
0: स्वरूप है प्रजुक्त अनूप
1: है
0: अनुकत स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है अपर्ण है कर्म है नाथ है जुगाद है अनास है उदास है तंद है अबंध है
1: अपक्त है विरक्त है नाश है प्रकाश है
0: लजिंद है सुनित है अलिख है अधिक है
1: अलिख है पेख है डा है गा है
0: असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है
1: अनित है सुनित है जात है जाद है
0: चरपट छंद तव प्रसाद
1: सर्वनंता सर्वंगंता
0: सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं कर्ता
0: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
1: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं
0: सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता नमो नाथ नाथ से सदा प्रकाश से
1: अनंत रूपे पंगम भूते
0: परमात्म परमाथे सदा सर्व साथे
1: अकाल स्वरूपे निर्भा
0: अनंगी न मित्र पंगी त्रिका में
1: पंगी स्वरूपे सर्वंगी रूपे
0: न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र
1: न दात न मात न जात न पाते
0: निस्साकं श्रीख है कैम तो अमीख है
1: सैवं प्रभा है जाय है भगवती शन तो प्रसाद के जार जूर है के हाजर हजूर है
0: हमेश सलाम है समस्त कलाम है
1: साहब दिमाग है के उसन चिराग है
0: के कामल कमरी के राज रहीम है
1: के रोजी दहन है के राज रहीम है
0: के हर करीम कमाल है हसनुल जमाल है
1: गनीम सराज है गरीब नवाज है
0: हरीफ उसकन है हरास उल्फकन है
1: लंकन प्रनास
0: समस्त निवास है तमामल तमीज है समस्त लजीज है अदेसल लेख है मेसल पेख है
1: मीनल जमा है मीकल मा है
0: करीमल कमाल है के जुरात जमाल है
1: के चरण प्रकाश है के अमित सुभाष है
0: के अर्ब स्वरूप है के अमित विभूत है
1: के अमित प्रसाद है के आत्म प्रभा
0: है के अचल अंग है के अमित अपंग है
1: मन पार शांत तो प्रसाद मन मन प्रणाम गण गण मदान
0: हर बार गंज हर नर प्रपंज हर नर अखंड बर नर मंड
1: प्रकाश
0: गुण गण प्रणाम जल थल मदाम
1: उपमा
0: अपार गत मित धार
1: जल थल मंड दिस विस भंड
0: जल थल महंत दिस विस बेअंत
1: आ
0: जान बाहो एक कै सदा
1: ओंकार
0: थल खंड ख्याल गुर बुर अकाल
1: प्रणाम चित चन नाम
0: आ छे जगा अजज न बात
1: अनुचंज गात अनुरंज पात
0: अनठट भंडार अनठट अपार
1: अतीत धर्म अतीत कर्म
0: अनुमृणत अनंत दाता महंत
1: हर बोल मना शांत तो प्रसाद करनाल है काल है
0: कल खंडल है मह मंडल है
1: जगदेश्वर है परमेश्वर है
0: कल कारण है सब वारण है
1: जिनके कारण है जाके कारण है
0: मनमान्य है जग जान्य है
1: सर्वं पर है सर्वं कर है
0: सर्वास्य है सर्वनास्य है
1: करना कर है विश्वंभर है
0: सर्वेश्वर है जगदेश्वर है
1: ब्रह्मंड सह कल कल
0: है परते पर है करना कर है कृताकृत है मृत अमृत है कृताकृत है धरणी त्रित
1: है
0: अकृताकृत है मृत अमृत है निर्णायक है कलकायक
1: है
0: निर्णायक है सर्वपायक है
1: जपजापन
0: है जप जापन है कर्ताकर है हरता हर है
1: परमात्मा है सर्वात्म है
0: आत्म बस है जस के जस है
1: नमो
0: राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
1: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे
0: नमो वृंद ਵਰਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ
1: ਨਮੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗ ਰੂਪੇ
0: ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਨ ਤੰਗ ਅਤੰ ਤੰਗ ਸਰੂਪੇ
1: ਨਮੋ ਜੋ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ
0: ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ
1: ਨਮੋ ਜੁਤ ਜੁਤੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ
0: ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ
1: ਨਮੋ ਕਰੇ ਕੰਤਾ ਨਮੋ ਸਾਂਤ ਰੂਪੇ
0: ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਅਨਾਦੰਗ ਬਿਭੂਤੇ
1: ਅਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਲੰਕਾਰ ਲੰਕੇ
0: ਨਮੋ ਆਸਾਸੇ ਨਮੋ ਬਾਂਕ ਮੰਕੇ
1: ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਨਾਮੇ
0: ਅਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਕਾਮੇ
1: ਏਕ ਅਚਰੀ ਛੰਦ ਅਜੈ ਲੈ ਪੈ ਬੈ
0: ਭੂਜੂ ਅਨਾਸ ਅਕਾਸ
1: ਗੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪੱਖ
0: ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਲੇਖ ਭੇਖ
1: ਨਾਮ ਕਾਮ ਗਾੜਾ
0: ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਜੋਨੀ ਅਮੋਨੀ
1: ਨਾਰਾਗ ਨਰੰਗੇ ਨਰੂਪੇ ਨਰੇਖੇ
0: ਕਰ ਮੰਗਾ ਭਰ ਮੰਗਾ ਗੰਜੇ ਲੇਖੇ
1: ਭਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਛੰਦ ਨਮਸਤ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸਮਸਤ ਪ੍ਰਣਾਸੇ
0: ਅਗੰਜਲ ਨਾਮੇ ਸਮਸਤ ਨਵਾਸੇ
1: ਕਾਮ ਬਿਭੂਤੇ ਸਮਸਤ ਸਰੂਪੇ
0: ਕਰ ਮੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਇਸ ਧਰਮ ਬਿਭੂਤੇ
1: ਸਦਾ ਸਚ ਨਾਮ ਸਤਨ ਪ੍ਰਣਾਸੀ
0: ਕੀ ਮੁਲਕ ਨਾ ਸਮਸਤ ਨਵਾਸੇ
1: ਅਜਾਇ ਬਿਭੂਤੇ ਅਜਾਇ ਗਨੀਮੇ
0: ਹਰੀ ਅੰਕ ਹਰੀ ਅੰਕ ਹਰੀ ਮੁਲ ਰਹੀ ਮੈਂ
1: ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ

0: तू चलाए तेव चले जिन्ना मार्क पावे
1: कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे
0: जिसनो कथा सुनाए अपने से गुरदारे सुख पावे
1: कह नानक सच्चे साहिब जो पावे तेव चलावे
0: ए सोहला शब्द सुहावा सदा सोहला।

खोले फासे बाबा नांगड़ा आया जग में दुख सुख लेख लिखाया लिखेड़ा सहा न टल जिहड़ा पुरब कमाया।

0: सिमरो सिमर सिमर सुख पावो
1: काल कलेसान माए मटावो
0: सिमरो जास बसंबर एक
1: नाम जपत्या गणता अनेक
0: वेद प्राण सिमर सुधाखिर
1: कीने राम नाम एक अखर
0: का एक

0: अवर न जाने
1: भूत भूत जन हर रस राते
0: सवन समाद नाम रस माते
1: आठ पैर जन हर हर जपे
0: हर का भगत प्रगट नहीं।